प्रणाम शुभ पावनावां पूरिया करनियां आप जी दे हजूर कड़ाहा प्रसाद दी दे गहादर है दर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़ दे सुन दे सरबत।

आपे ही करना क्यों कल आपे ही ते तारी है। देखा किता अपना धर कच्ची पक्की सारी है। जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी है। जिसका जी प्राण है क्यों साहिब मनो भी सारी है। अपन हथी अपना आपे ही काज सवार।

आपे भांडे साजिए नापे पुरलदे इक नी दुध समाई इक चुल्हे रहन चढ़े इक ने हाली पैसे।

अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौं श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइयै जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नौ निध आवै ताए सब थाई हुए सहाए। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाए। दसां पातशाहियां दी जोत

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चहन अर बरन जात अर पात नहिन जे रूप रंग अर देख पेख को कहना सकत के अचल मूरत अनपौ प्रकाश अमितोज कहिज कोट इंद्र इंद्राण साहे सहान गणिज त्रिपवन महीप सुर नारय सुर नेत नेत बन तृण कहत त्वय सर्व नाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत सुमत जिह सतगुर सिमरंत नयन के तिम्र मिटह खेन जिह सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जिह सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे जिह सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नाव निद पावे सोई राम दास गुर बल पाण मिल संगत तन तन करहो जिह सतगुर लग प्रभ पाई सो सतगुर सिमरहो नरहो फुरमान तेरा सिर ऊपर फिर ना करत विचार तुही दरिया तुही करिया तुझ ते निस्तार बंदे बंदगी इकतियार साहेब रोस तरौ के प्यार नाम तेरा आधार मेरा ज्यों फूल जई है नार कह कबीर गुलाम कर का जी आए पावै मार अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम अपना तन मन होए निहाल जा गुर देखा सामने सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी नूरे अरसह कुरसह चटिया तुद डिठे सच्चे पाते सा माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहद साहु जि सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहद सा।

सहज सुभाव ता हर मन भाव सदा अतीत बैरागी हालत पालत शोभा जागे अंतर राम नाम लेव लागे हरख सोग दुहाते मुक्ता जो प्रभ करे सो पावे सत संगत मिला वड पाग।

सदा रह कर जोड़, प्रभ मन पाया जियो, प्रभ मन पावै ता हुकम समावै, हुकम मन सुख पाया।

नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

तेरा अंत न पारा वरिया। राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपार। सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सिरजनहार। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातार। हर त्यावहु संत हो जी सब दुख विसारण हार। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचार। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समान। एक दाते एक भेखारी जी सब तेरे जोज बिडान। तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर न जान। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखान। जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबान। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी। से मुकत भय जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जी तिन का भव सब गवासी। जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंत। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंत। तेरी अनक करह हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंत। तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंत। से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंत। तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहै सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई। जो तौ भावै सोई थीसी जो तू देह सोई हों पाई रहाओ। सब तेरी तू सवनी त्याया जिसनो कृपा करहै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल बिछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेखै जानहि सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तेत सरवरड़ पहिले निवासा पाणी पावक तिन्ह किया। पंक जो मोह पग नहीं चालै हम देखा तह डूबी अले। मन एक न चेत समूढ़ मना हर विसरत त्या रहाओ। ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया।
प्रणवत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, भई प्रापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी वरिया। आवर काज तिर कित न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भव जल तरण कै, जन्म वृथा जात रा।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपई। हमरी करो हाथ द रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपार। हमरे दुष्ट सवै तुम काव हो, आप हाथ दे मोहे बचाव हो। सुखी वसै मोरो परिवार, सेवक सिख सवै करतार। मोर अच्छा निज कर दे करिय, सब बैरन को आज संघरिय। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दे मुझे उवरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हूजो सदा हमारे पच्छा, सिरियस तुझ जो करियो रक्षा। राख लिहो मोहे राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिवजू अवतर। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जच्छन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मो बध कियो। घाट घाट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचरी असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपार। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंब। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, किह बिद सजा प्रथम संसार। एक रूप अनूप स्वरूप, रंक भयो राव कही भूप। आंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर अकैठा। सीगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आदि जुगाद स्वरूप सुजंपव। आव रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दोष्ट जिते उठवाते उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तब शरणी परे, तिनके दोष्ट दुखत है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला।
कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शह स्व सकन कोई। एक बार जिन तुम्हें संभार, काल फांसते ताहे उवार।

सवैया पाए गहे जावते तुमरे तावते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सवै बहु भेद कहें हम एक न जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहे ओ

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन भजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दो तां गावहु हरि केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारण अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारण सबना गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मनह वसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाहीं घर तेरे घर तां तेरे सब किश है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं घर तेरे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दियाँ इह वडियाइया कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधार बाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द बाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंट कमारिया तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होआ तित घर।

मुंदावनी महला पंजवा थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पईओ जिसका सब सधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो एहे वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर तारो ताम संस

गुरु बोलो जी। जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हित सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइया चरखड़िया ते चेड़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई।

ताते अंगद पयो तत स्यों तत मिलायो अंगद किरपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमर दास अमृत शतर गुर राम दियो गुर रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैण मूरत पंच परमान पुरख गुर अर्जन पिखो नैण हों अपराधी गुनहगार हों बेमुख मंदा चोर जार जुआर हों पर कर जो हंदा निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा विसास काती अकिरत कान मैं को ना रखंदा सिमर मुरीदां ढाडियां सतगुर बखसंदा सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए ओह अविनाशी पुरख है सब मह रहया समाए दर्शन प्यासी दिन सरात चित वो अन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत

जो हम बंदे मोह फास, हम प्रेम बदन तुम बादे। अपने शूटन को जतन करो, हम शूटे तुम आराधे। जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बदन तुम बादे। अपने शूटन को जतन करो, हम शूटे तुम आराधे। माधवे जानत हो जैसी तैसी, अब कहाँ करोगे ऐसी। रहाओ मीन पकड़ फांकियो अर काटियो, रांद कियो बहबानी।

आपन बापै नाहीं किसी को पावन को हर राजा मोह पटल सब जगत ब्यापियो भगत नहीं संताप कह रविदास भगत एक बाड़ी आव इह कास्यों कहिए जा कारण हम तुम आराधे सो दुख अजहु सहिए कह रविदास भगत एक बाड़ी आव इह कास्यो कहिए जा कारण हम तुम आराधे सो दुख अजहु सहिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

परे एक गुण नाही। अमृत शाड बिख बिख खाई, माया मोह परम पै भूले। सतदारा स्यों प्रीत लगाई, इक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। ते मिलंत जम त्रास मिटाई, इक अरदास पाठ कीरत की। गुरु रामदास राख शरणाई, इक अरदास पाठ कीरत की। गुरु रामदास राख शरणाई, सुख टल गुर सेविया। अहनिस सहज सुभाई, दर्शन परसया गुरु का। जन्म मरण दुख जाय, होवे सिफत खसम दी। नूर अरसो कुरसो चट्टी है, तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कटी है, सज्जन सच्चा पातशाह। सिरशाह दशाह, जिस पास बैठिया सो ही है। सबना दावी साहो, सज्जन सच्चा पातशाह। सिरशाह दशाह, जिस पास बैठिया

संतः मन पवन सुख बनिया किस जोग प्राप्त गनिया रहा गुर दिखलाई मोरी जित मिर्ग पड़त है चोरी।

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो।

अकाल मूर्त जुनि सह पंगुर प्रसाद असा महला पहला वार श्लोका न श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे सराज की तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने दो हरि सदवा जिन मानस

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़े कूड़ बैसनहार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपार कूड़ मिया कूड़ बीबी खा पोहे खा कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करता।

हथ तपर सिके हथ हथ लगह गुर अमर पै जी तपर सिके हथ जी गुर अमर पनीजै नैन तपर सिके हथ नायन गुर अमर पखीजै सरवन तपर सिके हथ सरवन गुर अमर सुनीजै सिक्यत सोहियो जित ही बसा गुर अमरदास निज जगत पित सिक्यत सो सिर जालप भनै जो सिर निवै गुर अमर नित।

गुरु सेविया अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत संबंध गुरर सोह कुरसोह चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाहद जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा विसाहो सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाहदशाहो जिस पास बैठिया सो

पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निवल पवंगम साधे पंच जना स्यों संग न छुटकियो। अधिक अहं बुद्ध बादे प्यारे, इन बिद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार पर्यो स्वामी कै द्वारे, दीजै बुद्ध विवेका, रहाउ मोन पयो कर पाती रहयो, नगुन फिरयो बन माही, तट तीरथ सब धरती भ्रमयो, दुविधा छुटकै नाही, मन कामना तीर्थ जाए बसयो, सिर करवत तराए, मन की मैल न उतरै बिद, जे लख जतन कराए, कनक कामनी है वर गैवर, बहु विद दान दातारा, अन्न वस्त्र भूम बहु अर्पे, न मिलिय हर द्वारा, पूजा अर्चा बंदन दंडौत, खटकर्मा रत रहता, नह मिलिया यह जुगता, जोग सिद्ध आसन चौरासी, ए भी कर कर रहया, वड्डी आर जा फिर जन्मै, हर स्यों संग न गहया, राज लीला राजन की रचना, करया हुक्म अफारा, सेज सोहनी चंदन चोआ, नरक घोर का द्वारा, हर कीर्त साध संगत है, सिर कर्मन कै कर्मा,
इस भयो प्राप्त। जिस पुरब लिखे का लहना, तेरो सेवक इह रंग माता, भयो कृपाल दीन दुख भंजन, हर हर कीर्तन इह मन राता, रहाओ दूजा तेरो सेवक इह रंग माता, भयो कृपाल दीन दुख भंजन, हर हर कीर्तन इह मन राता, रहाओ दूजा वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवा, घर दूजा अष्टपदिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पाठ पढ़ियो अर वेद विचार्यो, निवल पुंगम साधे, पंच जना स्यों संग न छुटक्यो, अधिक अहम